0: क्वालिटीले आयो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज, अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई, नागरिकता भए पुग्छ, हरेक घरको खुसी घर घरमा एलजी, एलजी लाइफ गुड।
1: रेडबुल बबाल एनर्जी।
2: नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा नवीन र पूजनी।

0: रेड बुल बब्बाल एनर्जी
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख रुपियाँमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि
3: यो महिना रेडियो कान्तिपुर